0: प्राइवेट लिमिटेड वेगास हाउसिंग वेगास सिटी बालकुमारी ललितपुर फोन नंबर 01-5200772 5200772 हाई फेस बी प्रिपेयर्ड सेफ्टी फर्स्ट
1: 4-10-10-41

0: धार्मिक स्थल चौतारा पानीको स्रोत पुरातात्विक एवं सामाजिक संरचनाको सधैं संरक्षण गरौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक।
3: इट्स 9 PM।
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.

0: धार्मिक स्थल चौतारा पानीको स्रोत पुरातात्विक एवं सामाजिक संरचनाको सधैं संरक्षण गरौं।
1: सामाजिक सचेतनाका लागि क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज।
2: टाइम चेक।
3: इट्स 10 पीएम।
4: This time check is brought to you by High Face. Be prepared. Safety first.